0: साल थॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड। लंदन, आर यू रेडी? Raghav Ends presents to you for the first time. Legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
2: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
1: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाई। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्मे जे बुझे, ताहू मैं कह न कोई। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी ले फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खा। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवा। साचा साहेब साच ना।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहावे।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी।

जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती छित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापै जाए।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Like a radio.
0: Traffic and travel.
3: Simon James, so far nothing too unusual showing up on the motorways this morning. M1 appears to be incident free. M6 south into the West Midlands, rather heavy again, already up to a 40 minute delay from the M54 junction 10A down to the M5 junction 8. There's problems in Birmingham, a police incident. This is on the one way system. Livery Street is closed near to Mary Ann Street. Also expect delays coming up from Rutland in the Stamford area on the northbound A1 Great North Road, a lane taken out by a burst water main from Stamford from the Casterton Lane Junction to Colsterworth Services. Reminder at Stourbridge to that closure of Racecourse Lane, Block 2 through traffic. That's the latest.
0: This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
5: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
6: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
6: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: Function rakha hua hai.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
9: द वेट इज फाइनली ओवर.
10: सही सुर लगा रहे मुमताज.
9: मिर्जापुर इज कमिंग टू द बिग स्क्रीन.
11: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से.
9: पावर, रिवेंज और मिर्जापुर की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल.
12: अबे कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर.
9: पंकज त्रिपाठी एज कालीन भैया, अली फजल एज गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स. जस्ट 3 days टू गो. मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमाज September 4th.
11: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
13: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
0: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
14: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to take my...
15: Hey, boy!
16: Coast Guard, we're stuck.
17: Okay, help's on its way.
16: Hold on, mate.
18: Shoes tied. Phone.
16: Back before dark, love. Okay.
19: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
20: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F. Face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A. Arms. Can they raise both arms and keep them there? S. Speech. Is their speech slurred? T. Time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
5: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 Belgrave Road, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड मेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
15: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
0: On this week's Leica Extra podcast, Raj Badden and Kush talk to the Diwali story.
21: The three reasons why we did Diwali story. One was to address this issue of mythology. It's not. It's our DNA. It's our history. It's actually 14,350 years old. And really bring Lakshmiji right to where she belongs and relevant to Sita.
0: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. This is Leica Radio across the Midlands.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: The Lyca Radio Network, the perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइका गोल्ड 2 ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप laikaradio.com एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल्ड 2। लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज बाय लॉगिंग ऑन टू laikaradio.com एंड सिलेक्टिंग मिडलैंड्स और द मोबाइल ऐप। This is the largest commercial Asian radio network.

0: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: Good morning. आइए बात करते हैं आज के मौसम की, और आज मौसम ज्यादातर खुला रहने वाला है, यानी कि धूप देखने को मिलने वाली है, लेकिन कभी कभी कुछ बादल भी आ सकते हैं और कभी कभार बरस भी सकते हैं। लंदन में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री तक रहेगा, और मिडलैंड्स का दिन भी आज ड्राई रहेगा, ब्राइट रहेगा, और टेम्परेचर 22 से 21 डिग्री के बीच में रहेगा।
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: Leica Radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. This is Leica.

0: आर डी बर्मन का म्यूजिक और किशोर दा की आवाज, अमिताभ बच्चन की फिल्म सत्य पे सत्ता से था ये गाना, और उससे पहले अवतार फिल्म का गीत जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक, और आपने सुना आपके मनपसंद लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन से एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और आज एक बार फिर से ऋतु शर्मा आपके साथ है, सेटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी, और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? मौसम में अब मीठी मीठी ठंडक आ चुकी है, कहते हैं ना जैसे गुलाबी ठंड, मौसम कुछ ऐसा हो गया है। और हो भी क्यों ना, सितंबर का महीना जो शुरू हो गया है, देखिए आज है 1 सितंबर, नया महीना की शुरुआत। आज मंडे होता तो हम ये कह सकते थे कि नए वीक की शुरुआत, लेकिन कोई बात नहीं, आज ट्यूजडे है, बजरंग बली का दिन है। आज के दिन की आपको ढेरों बधाइयां शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आपका दिन हर दिन की तरह अच्छा बीते। आपके मैसेजेस मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो बस जुड़े रहिए, 1 बजे तक हम और आप यही रहेंगे और मैं आपको सुनवाती रहूंगी और आप मुझे सुनते रहेंगे अच्छे अच्छे गाने।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 आज आपको देगा 128.1 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर हमेशा की तरह आपको आज भी करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
4: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
4: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
4: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
6: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
7: I happen to happy valley feeling like a Diwali.
8: It's back and it's bigger.
9: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
8: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
9: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
8: Exclusive charity partner, Go Dharmic.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: शम्मी कपूर पर पिक्चराइज रवि साहब की आवाज में ये गाना तब भी सुपरहिट था और आज भी सुपरहिट है। जानवर फिल्म से था ये गाना और ऐसे ही गाने आप सुनते हैं हमारे यहाँ से, क्योंकि ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड। और इस शो में ऋतु शर्मा आज भी आपका साथ दे रही है सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है और समय हो जाता है आज के ताजा समाचारों को सुनने का।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आपके मुझे ढेरों मैसेजेस मिले हैं जिन पर मेरी नजर जरूर जाएगी, लेकिन फिलहाल सुनवाते हैं आपको आज की ताजा खबरें।
1: मनोरंजन विथ रवि शर्मा।
0: तो आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबर भारत से। करंट फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही यानी कि क्वार्टर वन में इंडिया ने 7.8% की शानदार जीडीपी ग्रोथ हासिल की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे देशवासियों की मेहनत और आत्मनिर्भर भारत की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज का नतीजा बताया है। बिश्केक यानी कि किर्गिस्तान में चल रहे 26th शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया है और यहां उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ बायलैटरल और रीजनल इश्यूज पर डिस्कशन किए हैं। आपको बताते हैं कि कमर्शियल LPG सिलेंडर्स के रेट में आज से नए रिविजन्स लागू हो गए हैं भारतवासियों के लिए, ये एक खबर है। और उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को अब इमिग्रेशन काउंटर्स पर फिजिकल बोर्डिंग पास की स्टैंप लगवाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि डिजिटल पासेस पूरी तरह से वैलिड रहेंगे। तो ये एक गुड न्यूज़ है इंटरनेशनल ट्रैवल करने वालों के लिए जो भारत जाते आते रहते हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि बिहार के जहनाबाद में नदियों का वाटर लेवल बढ़ने से फ्लड अलर्ट जारी किया गया है और वहीं पर मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में हैवी रेन की वजह से चित्रकूट के रामघाट समेत कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। विदेशों से कुछ खबरें सुनाते हैं। सबसे पहले नेपाल से कि नेपाल की जो फ्लड की जो प्रॉब्लम हुई थी जिसमें अब तक 3,900 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं और इनमें 600 से ज्यादा कर्मचारी हैं। माना जा रहा है कि ये त्रिशूली नदी के किनारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजनाओं में बनी मिट्टी की भरी सुरंगों में फंसे हुए लोग हैं। इंजीनियर्स इन सुरंगों के अंदर हवा पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक टीम ने इनमें से एक सुरंग के अंदर जाने में भी कामयाबी हासिल की है लेकिन वहां किसी को ना पाकर उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेंद्र शाह ने कहा कि इन परियोजना स्थलों से लगभग 279 यानी कि 279 लोगों को बचाया जा चुका है और अभी भी बचाव अभियान जारी है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा बचाई जा सके उतना ही अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित SCO की बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को धन मुहैया कराने और आतंकवादियों को भर्ती करने, उन्हें रेडिकलाइजेशन और उन्हें सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने से पूरे जो इकोसिस्टम है उसको ध्वस्त करना होगा, इसका जो पूरा इकोसिस्टम है उसको ध्वस्त करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें एक स्वर में बोलना होगा कि इस आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उन्होंने दुनिया में चल रहे संघर्षों के बारे में भी कहा, सभी तनावों और युद्धों का समाधान युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि संवाद और डिप्लोमेसी से ही संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लिए SCO का मतलब है सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी। उधर यूएस एयरफोर्स ने ईरान के लारक आइलैंड पर स्थित आईआरजीसी रॉकेट लॉन्चर्स पर एयर स्ट्राइक्स की है। इसके जवाब में ईरान ने जॉर्डन में स्थित यूएस मिलिट्री बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है, जिन्हें यूएस एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया है। यूएस प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया है कि यूएस नेवी की सिक्योरिटी गाइडेंस में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना लगभग 30 ऑयल टैंकर सेफली पास हो रहे हैं, जिससे ग्लोबल क्रूड ऑयल की सप्लाई पर बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट में मतभेदों की वजह से यूएस आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: क्या खूबसूरत गाने हैं। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको सुनकर हम उनमें खो जाते हैं, और ये गाना भी कुछ ऐसा ही, और उस पर आवाज किशोरदा और लता मंगेशकर की कमाल है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. ये है लाइका रेडियो।
0: जी हाँ बिल्कुल, आप अपना मनपसंद रेडियो ही सुन रहे हैं और हमारे ढेरों मैसेजेस भिजवाए हैं हमारे साथियों ने। लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। मैं ऐसे ही सोशल मीडिया पर कुछ देख रही थी तो मुझे एक बहुत ही अच्छी सी बात सामने दिखाई दी और मुझे लगा कि बहुत ही सही सोच कर लिखा है किसी ने कि जो मदद होती है, मदद जिसे कहते हैं सहायता, एक ऐसी घटना होती है जिसे करो तो लोग अक्सर भूल जाते हैं और अगर ना करो तो लोगों को हमेशा ये बात याद रहती है। और कहते हैं ना कि आप किसी के साथ 100 बातें अच्छी कर दीजिए वो भूल जाएगा, लेकिन अगर आपने कहीं किसी एक चीज के लिए ना कह दिया या कोई एक चीज ऐसी कर दी जो उसको पसंद नहीं आई, वो उस चीज को जीवन भर याद रखता है। ऐसा मेरे साथ तो होता है, आपके साथ हुआ है ऐसा? बहुत ही जनरल नेचर है ये इंसान का। एनीवेज, इस बात को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आपके मैसेजेस मिले हैं। सुनील कपूर जी, थैंक यू। आप कहते हैं क्या बात है, आपने मेरा दिन बना दिया। आई थिंक आप पहले दो गानों के बारे में बोल रहे हैं क्योंकि आपका मैसेज सबसे शुरुआत में ही आया था, तो स्वागत है आपका। मिसेस पेके चियांग, आप हमारा सुन रही हैं प्रोग्राम, सो थैंक यू। आज 1 सितंबर है, यस, नए महीने की बधाइयां आप सबको, और उम्मीद है कि ये नया महीना आप सबके जीवन में और भी खुशियां लेकर आएगा। तृप्ति, आप हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू नरेंद्र बागिया जी। आप M1 मोटरवे पर मिल्टन कीन्स जा रहे हैं, मोटरवे पर है और हमारा साथ भी दे रहे हैं, तो आपका भी स्वागत है। बिल्कुल, अगला गीत आपको डेडिकेट करते हैं। फारूक मोहम्मद जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जयंत एंड मीना जी, थैंक यू, हैप्पी ट्यूसडे। अनिल सोनी जी हमारे साथ है वियाना से, और भारत से यानी कि इंदौर से गिरीश जी साथ जुड़ चुके हैं, पूछ रहे हैं मैं कैसी हूँ। बिल्कुल कल जैसी, बहुत अच्छी, थैंक यू। उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे। शेखर राणा जी, थैंक यू, प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं। मृदु जी हमारे साथ हैं, मिसेस शेख हैं, तोची जी हैं, और चंदू शाह का मैसेज आया है, कहते हैं आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स फॉर देयर काइंड विशेज ऑन माय बर्थडे टुडे। ओहो, आज आपका बर्थडे है, चलिए हमारी ओर से भी आपको हैप्पी बर्थडे। एंड ऑन योर वेडिंग एनिवर्सरी यस्टरडे, तो कल आपकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, क्या बात है, बैक टू बैक दो बड़े सेलिब्रेशंस। चलिए एनिवर्सरी की बिलेटेड और हैप्पी बर्थडे की आज की आपको बहुत बहुत बधाइयां। और अगला गाना चलिए आपको डेडिकेट करते हैं।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि अगर कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो दुबई चले जाइए, क्योंकि साउथऑल ट्रेवल के पास बहुत अच्छी डील्स है दुबई के लिए। उन्हें कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर। Southall Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है लाइका रेडियो।
3: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमंत्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। संडे 27th of September, डी मॉन्टफोर्ट हॉल, लेस्टर। डोर्स ओपन 6:30 PM, शो स्टार्ट्स 7 PM। टिकट्स बुक करें dimontforthall.co.uk
4: या मुंबई सैंडविच स्टेशन ऑन 0116-332-0262 और कॉल मिस्टर बी ऑन 0786028-0655। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
5: द वेट इज फाइनली ओवर,
6: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
5: मिर्जापुर इज कमिंग टू द बिग स्क्रीन।
7: गद्दी ना तो विरासत से मिलती, ना सियासत।
8: पावर, रिवेंज और मिर्जापुर की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल।
9: अबे कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर।
8: पंकज त्रिपाठी एस कालीन भैया, अली फजल एस गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स। जस्ट 3 days टू गो। मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमाज September 4th।
10: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
11: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय।
12: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14-night कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस। खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर। सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
13: The buy is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
14: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
15: Dubai is the place. 11, 11.
14: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
16: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
17: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel. Your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
18: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
19: The big bank is loading and ready tomorrow. Stay tuned.
1: Network, proud hospitality partner, Ragasan.
20: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
21: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758-580-1801 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
1: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
22: Hey there, main hoon Bali Brahmbhatt. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baate, raag adharit gaane on Laika Gold and Laika Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: अकेली न जा।
1: सुमन कल्याणपुर और मुकेश जी की आवाजों में था ये गाना, जिसे आपने सुना आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन से। और अनिल सोनी जी वियाना में कहते हैं कि ऋतु मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। नेवर ने गाड़ी मांगी, साइकिल मांगी चलाने के लिए, 30 दिन तक दे दी तो खुश रहा, और एक जब लाखरे दिन कह दिया कि आज खराब हो गई है तो बुरा मान गया। होता है, हम सब के साथ ऐसा हुआ है। जासू जी कहती है मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ये जीवन है, ऐसे ही लोग हैं आजकल ज्यादा। कुछ और बातें बताऊंगी लेकिन फिलहाल,
2: दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 376 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Leica Radio.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: The gold rate is 105.20 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
4: Leica Radio.
5: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
6: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू। और हर्ज़मैन बटर 20 kg सिर्फ 10.99।
7: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
2: One performer.
8: इनके सामने तो प्रोसम से कहना क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया खिलाड़ियों के खिलाड़ी।
6: Countless personalities.
9: जिंदगी बर्बाद हो गया।
2: A whole universe of entertainment.
10: नन्ना फंक्शन रखा हुआ है।
6: Sunil Grover live UK tour 2026.
2: 29th October Ova Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
6: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
2: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
6: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
11: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
12: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
13: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk. LEMFI means quicker and safe way to send money.
0: LEMFI means low transaction fees and great exchange rates.
13: LEMFI means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
0: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LEMFI. Download the LEMFI mobile app today.
9: LEMFI is registered by the FCA. T's and C's apply.
14: Punjab, the biggest tunes. Not

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी.
1: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
2: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
3: Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Padden weekdays at 4 p.m. Laika Radio.

0: It's brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: Good morning. आइए बात कर लेते हैं एक बार फिर से मौसम की. और आज मौसम मिला जुला है. धूप भी देखने को मिलेगी लेकिन कभी कभार बादल भी छाएंगे और कहीं कहीं पर बरसेंगे भी. लंदन में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री तक रहेगा और मिडलैंड्स में आज मौसम ड्राई रहेगा, ब्राइट रहेगा. मैक्सिमम टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री तक जाएगा.
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
2: Like a radio. Manoranjan with Ravi Sharma.

गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और आज शो में एक बार फिर से मैं ऋतु शर्मा आपके साथ हूँ, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। 11:04 हुए हैं और ये समय निर्धारित है चिंतन के लिए। चिंतन यानी कि आज का विचार। और आज के चिंतन को शुरू करने से पहले आपके साथ चार लाइनें जरूर शेयर करूंगी कि चमक धमक के मेले में सब नकली मुस्कान लिए हैं, भीतर गहरे दर्द छुपाए चेहरे पर अरमान लिए हैं, दूसरों का रोशन आंगन देख क्यों अपना दीप बुझाना, जो मिला तुम्हें इस जीवन में वही तुम्हारा असली खजाना, नकाब ओढ़कर जीने से तो सादा जीवन बेहतर है, सच्ची खुशी तो भीतर है, बाकी सब तो बस दिखावा है। और यही मैसेज है हमारे आज के चिंतन में। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर था और उसने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा रखा था जिस पर लिखा था कि 20 रुपए में आप जैसे हैं वैसी फोटो खिंचवाइए, 30 रुपए में आप जैसा सोचते हैं वैसी फोटो खिंचवाएं, और 50 रुपए में आप जैसा लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसी फोटो खिंचवाइए, और बस लोग आते रहे, फोटो खींचता रहा। और कई सालों बाद जब वो बूढ़ा हो गया फोटोग्राफर और उसने अपनी बायोग्राफी लिखी, तो उसमें उसने लिखा कि मैं जीवन भर अनगिनत लोगों की फोटो खींचता रहा, लेकिन इस दौरान एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको 20 रुपए वाली फोटो खिंचवानी थी, यानी कि वो जैसा था उसको वैसी फोटो खिंचवानी थी। हर किसी को 50 रुपए वाली ही फोटो खिंचवानी थी। और यही हकीकत है आज हमारे समाज की, आज के समय की। दिखावे के रिश्ते, दिखावे की हंसी, दिखावे की अमीरी, और बहुत बार दूसरों की उस नकली 50 रुपए वाली जिंदगी के आगे हमें अपनी असली 20 रुपए वाली जिंदगी बहुत सस्ती लगने लग जाती है। इतनी सस्ती कि हम जो हमारे पास है उसका आनंद ही लेना भूल जाते हैं, हम अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं, हम खुश रहना भूल जाते हैं। जो चीज हमारे पास है ना, उसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद करना भूल जाते हैं, और जो दूसरों के पास दिखाई दे रहा होता है और हमें लगता है कि हमारे पास नहीं है, बस उसके लिए खुद को, अपने परिवार वालों को और ऊपर वाले को कोसना शुरू कर देते हैं। तो अगली बार अगर किसी का कुछ देखकर आपके मन में ये ख्याल आए कि वाह उसकी क्या जिंदगी है, उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तो एक बात याद रखिए कि कई बार फोटो असल में 20 रुपए वाली होती है, लेकिन हमें दिखती 50 रुपए वाली है। और उस ईश्वर वाले ने हमें, उस ऊपर वाले ने हमें इतना सब कुछ दिया है ना, हम दूसरों को देखकर भूल जाते हैं कि ऊपर वाले ने हमें ऐसी बहुत सारी चीजें दी हैं जो अनमोल है, और अगर उनमें से ऊपर वाला एक भी चीज हमसे ले लेना, तब हमें एहसास होगा
कि हमारे पास तो बहुत कुछ था। हम यही सोचते रहे कि हमारे पास कुछ नहीं है।

0: किशोर कुमार की आवाज में ये खूबसूरत गाना जिसमें आनंद बख्शी ने जीवन की कड़वी सच्चाई और ग्रैटिट्यूड के महत्व को बहुत ही खूबसूरती से बयां किया है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस म्यूजिक को बनाया है और इस गाने को हमने आज चिंतन के साथ जोड़कर आपको सुनवाया। और आज के चिंतन का मैसेज यही है कि आजकल की सोशल मीडिया वाली दिखावे की दुनिया जो है उसमें हम अक्सर ही दूसरों की नकली 50 रुपए वाली जिंदगी को देखकर अपनी वास्तविक 20 रुपए वाली जिंदगी की कद्र करना भूल जाते हैं। आजकल लोग असलियत से ज्यादा अपनी एक परफेक्ट छवि लोगों को दिखाने में बिलीव रखते हैं और अक्सर ही दूसरों की चमक धमक देखकर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास जो कुछ भी है ना उसकी खुशी की बजाय हमारे पास जो नहीं है हम उसके लिए दुख मनाकर बैठ जाते हैं। ऊपर वाले को धन्यवाद कहने की बजाय हम उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो जीवन हमारे पास है उसमें खुश रहना और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना ही सही बात है। अगर आप ऐसा करेंगे तभी शांति से जीवन जी पाएंगे। और यही मैसेज था आज के चिंतन का जिसे आप में से बहुत सारे साथियों ने पसंद भी किया है। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए गिरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चिंतन आप सुन नहीं पाए, कोई बात नहीं। अगर आप चिंतन नहीं सुन पाए हैं और दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लिसन बैक पर जाकर इस प्रोग्राम को, इस चिंतन को दोबारा भी सुन सकते हैं। इमीडिएटली नहीं, आफ्टर 3-4 आवर्स आप सुन पाएंगे। देसराज बसंत जी, थैंक यू, आपका मैसेज मिला है। आज बड़े दिनों बाद आपने मैसेज भेजा है और काफी लंबा है जिसे जरूर पढ़ूंगी थोड़ी देर बाद। लेकिन जैस्मीन जी, बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा रानी छावड़ा जी, हमारे उल्लास जी, जगदीश जी बुशी से, राजेश जी, अनिल सोने जी व्याना से, विजय गुडूरी जी, ललित छत्रीसा जी, हरविंदर जी एंड हमारे विजय गोनोवा जी, थैंक यू। सभी ने चिंतन को पसंद किया और उसके अलावा मैसेजेस बहुत सारे हैं जिन्हें मैं फर्स्ट आवर में नहीं पढ़ पाई थी, तो कोशिश करूंगी कि जरूर आपके मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। लेकिन फिलहाल तो समय है चिंतन से बाहर निकलकर आपको मस्ती भरे गीत सुनवाने का। तो बस सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गाना और इस गाने में आवाज है आशा भोसले की।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: पर उस गाने को बजाने से पहले आपको बता दें कि आज £1 आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 28.1 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना है वाया एसबीआई ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग दी योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99। फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE54UN।
4: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
5: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. on Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhvinder Vardali and his live band.
3: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
8: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
9: Southall Travel, at all protected.
10: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group.
11: Yeah, Leica Go.

0: तेरी।
1: सुनो लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, laikaradio.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी।
2: पंजाबी,
1: दिस इज लाइका रेडियो, पार्ट ऑफ द लाइका रेडियो नेटवर्क। Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app.
3: Leica Radio.
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Making summer feel better. On the Leica Radio Network.

0: सदा।
1: जी हाँ जी, बड़े दिनों बाद कहूँ या महीनों बाद इस गाने को प्रोग्राम में जगह मिली है और ये गाना मैं डेडिकेट कर देती हूँ हमारे विजय कुडूरी जी के नाम पर, महेंद्र बजारिया जी के नाम पर, अहीर घनोवा जी आपके नाम पर और हमारे जितने भी साथी देवानंद के फैन हैं उन सभी के नाम पर जाता है ये गाना। और इसके अलावा आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं, सो थैंक यू साथ देने के लिए, लेकिन पहले मैसेज पढ़ूंगी, एक डेडिकेशन है और ये भेजा है मधु जी आपने। कहती हैं कि मेरी डियरेस्ट ग्रैंड डॉटर की आज स्वीट 16th बर्थडे है, जिनका नाम है सैफी रे, आई थिंक मैंने नाम सही बोला है, और आप चाहती हैं कि उन्हें दादी मधु गडेचा और पूरे परिवार की ओर से ढेर सारी दुआएं ब्लेसिंग्स भिजवा रहे हैं आप सब और कहना चाहते हैं हैप्पी बर्थडे। और आपने एक गाना भी रिक्वेस्ट किया है, तो गाना तो मैं पता नहीं वो लगा पाऊंगी या नहीं, लेकिन हाँ जो अगला गीत है 90s का गाना है जरूर सैफी रे आपके नाम पर करते हैं। और आपके साथ साथ आज जो भी अपनी हैप्पी वाली बर्थडे मना रहे हैं उन सभी के लिए अगला गीत ये है Leica Radio.
2: Feel good track. Brought to you by Derry Valley. Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.

0: आप भी ऐसा करते हैं, खत कलम उठाकर लिखते हैं और हाले दिल तमाम किसी को बताते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो आज आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे है। जी हाँ, सही सुना आपने।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो सही सुना आपने कि आज के इस डिजिटल दौर में हाथ से लेटर लिखने की आदत को बढ़ावा देने के लिए और इसकी पुरानी यादों को सेलिब्रेट करने के लिए आज दुनिया भर में विश्व पत्र लेखन दिवस या कहूं वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे मनाया जा रहा है। तो आप चाहें तो आज किसी को लेटर लिख सकते हैं, अगर कोई खास है आपकी लाइफ में। वैसे एक बात बता दूं, लेटर जब मिलता है ना तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है और आप उसको बार बार पढ़ सकते हैं। लेकिन आजकल व्हाट्सएप के ज़माने में किसके पास समय है कि लेटर लिखे, फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर उसे पोस्ट करे, फिर लंबा इंतज़ार करे। आजकल सब क्विक क्विक फटाफट हो गया है, लेकिन फिर भी लेटर का मज़ा अलग ही है। और देखिए, लेटर से पहले कबूतर से चिट्ठी भिजवाया करते थे, बहुत सारे पुराने तरीके होते थे, लेकिन कभी उनके बारे में जब बात करते हैं तो अच्छा लगता था कि कैसा ज़माना था। उस जमाने में भी सारे के सारे काम होते थे, लोग उतने ही खुश रहते थे, उतनी ही अच्छी तरह से जीवन जीते थे। कभी मैं ये सब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या ये जो चेंज आया है, ये जो परिवर्तन आया है, ये वाकई में अच्छा है या पुरानी लाइफ ज़्यादा अच्छी थी? जो हमारे पुराने जिस तरह की लाइफ जीते थे, क्या उनकी लाइफ में स्ट्रेस कम था? आजकल की लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा है। बहुत सारी बातें हैं दिमाग में, कभी कभी ऐसे घूमती रहती हैं, दिल करता है कि आप सबके साथ शेयर करूं, लेकिन समय ही तो नहीं होता है, तो बस बातें कट करनी पड़ती है। और फिर मैं कट कर रही हूं क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। रोहित, आपको ये गाना बहुत अच्छा लगा और थैंक यू साथ देने के लिए। भावना जी कहती हैं, ऋतु आप कभी भी मेरे नाम पर कोई गाना नहीं करती हो। भावना जी, चलिए आपने अब ऐसा कहा ही है तो अगला गाना मेरी ओर से बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और ये गाना सिर्फ भावना जी सुनेंगी, कोई और नहीं। बजाती हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है और इसका टाइटल है द दिवाली स्टोरी शोकेस, और इसे होस्ट किया है राजपथन एंड खुश ने। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर।
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
3: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। संडे 27th of September, डीमॉन्टफोर्ट हॉल, लेस्टर। डोर्स ओपन 6:30 PM, शो स्टार्ट्स 7 PM. टिकट्स बुक करें demontforthall.co.uk
4: या मुंबई सैंडविच स्टेशन ऑन 0116-332-0262 और कॉल मिस्टर बी ऑन 07860-280-655. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
5: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danu Properties London office today on 02 03 963.

0: बप्पी दा का कमाल का म्यूजिक और उस पर किशोर कुमार की आवाज। ये गीत आपने सुना और उससे पहले कारवां फिल्म का गीत सुनवाया लता जी और रफी साहब की आवाज में। और लीजिए इन दो गीतों के साथ प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है। और अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो स्वागत है आपका इस शो में। मैं ऋतु शर्मा सिटिंग इन फॉर रवि जी और आपके मैसेजेस मिलते जा रहे हैं और एक डेडिकेशन आया है जिसे जरूर शेयर करूंगी प्रोग्राम में। और ये भेजा है मीना जी ने। मीना जी ने लिखा है कि हाय ऋतु, गुड मॉर्निंग, एंजॉयिंग लाइक अ गोल्ड दिस मॉर्निंग विद यू। आप हमारे साथ हैं, थैंक यू। और आपने ये भी बताया है कि आज जयंत जी का बर्थडे है तो आप चाहती हैं कि आपने लिखा है कि प्लीज विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मी अवर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑफ कोर्स लाइक अ गोल्ड। और आप ये भी चाहती हैं कि कोई अच्छा सा गाना मैं अपनी चॉइस का जयंत जी के नाम पर करूं। बिल्कुल, मीना जी की ओर से जयंत जी को जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयां। आप हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर हैं, मेरी ओर से भी आपको हैप्पी बर्थडे। और अगला जो गाना है जो हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक का गीत है जो है माला सिन्हा, वो गाना जयंत जी हम आपको डेडिकेट करते हैं। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देखा 128.1 भारतीय रुपए। और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Radio.
3: Laika Radio.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
7: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Light. Like a mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
8: The wait is finally over.
9: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
8: Mirzapur is coming to the big screen.
10: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
8: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
11: Ab Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
8: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Just 3 days to go. Mirzapur the movie, releasing in cinemas September 4th.
12: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. Dusra koi nahi khulega.
13: Listen on Little Garba Stars, Taiyar Thai Jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday, 17th October, Bapore 1-4 at Avanti Field School, Leicester. 1-10 Varashna Kids Mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957-477-330. Masti, music and a full-on Garba fun. Radio partner, Laika Radio.
14: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
15: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
16: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybourne Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
17: Location, location, location.
18: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
17: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
18: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
17: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
18: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
17: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
18: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
17: High appreciation.
18: In Dubai.
19: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
20: Four beers, please, garçon!
19: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
7: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favourite shows. Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: माला सिन्हा की फिल्म अनपढ़ से लिया था ये गाना, जिसमें म्यूजिक था मदन मोहन का, और माला सिन्हा ही है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।
3: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा।

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: भाई बनारस के पान ने और बनारसी साड़ियों ने बनारस को और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया है। वैसे तो बनारस बहुत सुंदर जगह है, देखने लायक जगह है और मेरी लिस्ट में है। मैंने आज तक कभी भी बनारस नहीं गई हूँ और मुझे वहाँ जाना है, लेकिन इस गाने ने, बनारसी पान ने और बनारसी साड़ी ने कमाल की पॉपुलैरिटी दी है बनारस को। और आप सबने इस गाने को पसंद किया है, सो थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी को। सुबह से लेकर अब तक आपने ढेरों मैसेजेस मुझे भिजवाए हैं जिन्हें मैं पढ़ भी नहीं पाई हूँ, लेकिन चलिए अब कुछ मैसेजेस आपके शामिल करते हैं।
2: Brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: तो हिमांशु पटेल जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज भेजा है, काफी लंबा है। मैंने पढ़ा है कि उसमें बहुत, क्या कहूँ, मैं पढ़ नहीं सकती, बहुत टाइम लगेगा उसको पढ़ने में, लेकिन मुझे बहुत हंसी आई। थैंक यू कहना चाहती हूँ प्रतिभा जी को, जो कह रही है कि मैं मैसेज नहीं भेज पा रही हूँ लगातार। मैं खाना बना रही हूँ, पाव भाजी और राजमा चावल आप बना रही हैं और कहती हैं कि मुझे गाने बहुत पसंद आ रहे हैं, तो बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाइए, क्योंकि अच्छे गीतों के साथ जब खाना बनाते हैं ना तो खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। थैंक यू आपके मैसेज के लिए। इसके अलावा भावना जी, नहीं ये कौन है हमारी लिसनर है जिनका नाम क्या है कहाँ है, हर मैसेज के साथ अपना नाम जरूर लिखा कीजिए। उषा जी हैं, कहती हैं कि जब आपने वो गाना लगाया ना, जब ना माना दिल दीवाना, कलम उठा के जाने जाना, ये गाना आपको 90s की याद दिलाता है, जब आपकी शादी हुई थी या आपका, मैं मतलब जो भी था, आपको याद आ गई अपने पुराने जमाने की। थैंक यू आपके मैसेज के लिए। इसके अलावा भारती दीदी हमारे साथ हैं, थैंक यू। दिनेश पोपट जी, विभाकर जी स्टैंड मोर से कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि आप हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, फ्राइडे तक रवि शर्मा जी के शो में मैं ऋतु शर्मा ही आपका साथ दूंगी। सो थैंक यू देसराज बसन जी, बहुत दिनों बाद आज आपका मैसेज आया है और आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारे साथ शेयर की है, थैंक यू। जैस्मीन जी, ये है हमारी रानी जी, रानी चड्ढा, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। बुशी से जगदीश जी आपने मैसेज भिजवाया है, थैंक यू। हरविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मितुल पटेल जी कहते हैं कि मेरा फेवरेट गाना कौन सा था, खुली वादियों में अकेले ना जाना, चलिए समझ लीजिए वो गाना हमने आपके लिए किया, आपको डेडिकेट किया। और फरीदा गुलाम अली जी आपका मैसेज आया था, अरुणा जी, मीनाक्षी जी, थैंक यू। शोभना राय जी, इमरान जी, बहुत सारे महबूजा, थैंक यू प्रज्ञा, थैंक यू सो मच। परी अमल भाई मेहता ऑरलैंडो USA में आप साथ दे रहे हैं, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। और चलिए अगला जो गाना है जिसे मैंने लिया है मधुमती से, जो 1958 की फिल्म है, आप सबको डेडिकेट करते हैं। लेकिन उससे पहले याद दिलाते चलें एक बार फिर से कि अगर आपने अभी तक टिकट नहीं खरीदा है दिवाली स्टोरी का, तो फटाफट टिकट्स खरीदिए। आपको ये मिलेंगे diwalistory.com पर जाकर। ये एक स्टेज शो है जो होने जा रहा है ओवो अरीना में, वैमली में, ऑन संडे 27 सितंबर को।
4: Laika Radio. This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: जी हाँ, लता जी की आवाज में मधुमती फिल्म का था ये गाना। और नरेंद्र पांचाल जी सही कह रहे हैं कि क्या ढोलक बजी है इस गाने में, कमाल का गीत है। सलिल चौधरी ने म्यूजिक सजाया है और शैलेंद्र ने सारे गीतों को लिखा है। और विजय जी हमारे कहते हैं कि बनारस ऋतु जरूर जाना, जब भी मौका लगे मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं, तो मुझे देखने जाना है वो पुरानी सिटी जिसका जिक्र हमारे शास्त्रों में भी है, बहुत सारी चीज़ों में है, तो वो देखने लायक जगह है, ज़रूर जाऊंगी। और मैंने शायद बनारस में ही होती है गंगा आरती, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं उस तरफ कभी गई नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्द शायद देखे मौका लगा तो मैं जाऊंगी देखने के लिए। आप वहाँ गए हैं और आप कह रहे हैं कि यस जाने लायक जगह है, बिल्कुल ज़रूर जाया जाएगा, थैंक यू साथ देने के लिए। और एक और बहुत ही खूबसूरत गीत आने वाला है, लेकिन उससे पहले आप हॉलिडे जाने के लिए अपने टिकट्स बुक करा सकते हैं साउथ होल ट्रैवल से ऑन 02085748410 पर। दुबई के लिए अच्छी डील्स चल रही हैं और उन्हें फोन कीजिए, साउथ होल ट्रैवल इज इट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: जो कर्ण जुने हुआ था वो बिग बॉस में दोबारा होगा।
3: Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September, only on Colours TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE 396.
4: Leicester Falcon Cash & Carry Festive Shopping का Perfect Destination. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी Falcon Stores पर। ओनम संध्या के लिए pre-bookings भी शुरू हो चुकी हैं। Falcon Snacks 300 grams की full range, सिर्फ £1.99 each. मुस्तफा देहरादूनी Rice 20 pounds, सिर्फ £13.49. सुहाना खमन ठोकला 500 grams, सिर्फ £1.99 each, या 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kgs, सिर्फ £29.96. S. Motiram Namkeen अब सिर्फ 99p से शुरू। और Herdsman Butter Ghee 20 kgs, सिर्फ £10.99. Falcon Cash & Carry 82A, Syston Street West, Leicester, LE12JU. And 2A, Rollout Sale, Leicester, LE54UN.
5: नमस्कार, मार्च 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટસીઇંગ, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર £4,499 પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. મહારાજા ટૂર્સ, તમારો વિશ્વસનીય ટ્રાવેલ પાર્ટનર. જાપાન તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
7: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
6: डेजर्ट सफारी,
7: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम.
6: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे.
7: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410.
3: साउथ हॉल ट्रेवल, एट ऑल प्रोटेक्टेड.
8: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place. 11, 11.
9: Call the Danu Properties London office today on 02 03.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास.
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
3: So gold rate is 105.2 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: जी, अब जाने की बेला आ गई है और जाते जाते आपके ढेरों मैसेजेस भी मिलते जा रहे हैं कि आपने मेरा साथ दिया और गीतों को एंजॉय किया. सो थैंक यू सतीश शाह जी, आई एम ग्लैड आपने शो को एंजॉय किया. थैंक यू. ये मैसेज किसने भेजा है? नाम ढूंढना पड़ता है. नलिनी जी कहती हैं आपने सही कहा, अच्छे गीतों के साथ खाना बड़ा टेस्टी बनता है और मेरा आज का खाना बड़ा स्वादिष्ट बना है. तो मजे के साथ खाइए क्योंकि मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो मैं भी घर जाके खाना खाऊंगी. लेकिन कल होगी हमारी आपसे फिर से मुलाकात और मेरे बाद बाली ब्रह्म भट्ट आपका साथ देंगे. कल जरूर साथ दीजिएगा. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. मेरी ओर से आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो.
5: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर. ये है
6: लाइका रेडियो.
7: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
8: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
9: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0786028-0655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
10: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The new properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
12: हेरोल्ड, न्यू वर्ल्ड of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
13: The Big Bank is loading and ready tomorrow. Stay tuned.

0: Wow, wow, wow. What two lovely songs that were adapted from Come September. Are, I better not get carried away here. But happy September to you. और बहुत बातें नहीं करूंगा, पहली तारीख है तो पहली तारीख का गाना इसके बाद जरूर आएगा, क्योंकि मुझे मैसेजेस मिल गए सबको, पहली तारीख पर रखता हूँ, सुनाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो। मैं हूँ बाली ब्रह्मभट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून, अवेलेबल ऑन 1033 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड laikagold.com एंड इट्स द 420th डे। 420 नहीं कर रहा हूं पर 420 दिन हो गए हैं, 420th डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स, एंड 4 बजे लाइका रेडियो मिडलैंड्स पे आएंगे राज बदन आफ्टर अ लवली लॉन्ग वीकेंड, पूरी तैयारी करके। And Laika Radio Midlands was set up on 1st of July 2025. And don't forget, on DAB from today, it's going to be all over Birmingham and other areas surrounding Wolverhampton, Walsall, sab jagah pe you will be able to hear Laika Gold and Laika Radio. Yes, yes, yes. और आज क्या क्या होने वाला है, वेल सेकेंड आवर में हम राज कमल जी को याद करेंगे। राज कमल जी के जो कॉम्पोजिशंस हैं, ओ माय गॉड, इतना मजा आने वाला है। बी इन अ क्लासिकल मूड, सेमी क्लासिकल मूड, या यू कैन से यसुदास मूड, ये तैयारी रखना। मैं हूं बाली ब्रह्मभट, सुनते रहिएगा, जुड़े रहिएगा और मैसेजेस भेजते रहिएगा प्यारे प्यारे, टू कीप मी inspired.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 128.1 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. T&Cs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Good afternoons with Bali Brahmbhat. Bali Brahmbhat is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pal, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
1: One performer.
4: के सामने का प्रश्न से कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया, खिलाड़ियों के खिलाड़ी।
5: Countless personalities.
6: जिंदगी बर्बाद हो गया।
1: A whole universe of entertainment.
7: फंक्शन रखा हुआ है।
5: Sunil Grover live UK tour 2026.
1: 29th October Ova Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
5: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Laika Radio Network.
8: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
9: Birmingham, get ready as Surinderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner, Laika Radio.
6: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय.
10: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबाडोस. खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं. प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर. सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए. विजिट maharajatours.co.uk or call 07956154846.
11: Birmingham Hodge Hill, this is not a drill. Pepe's is now open at 606 to 608 Bromford Lane. Get your chicken rice, chicken XL, flame grilled wings, strips, burgers, burritos and banging salads, all packed with Pepelicious flavour. Birmingham, come and get it.
12: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group.

बाबू खो पैसा जरा लाना, खो पैसा जरा लाना, लाना लाना खो पैसा जरा लाना आज पर।

मेहमान हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

को गम है कि पैसों चलो हाथ से, अरे लुटेगा खजाना खजाना खजाना, लुटेगा खजाना आज।

0: नागा है, भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना,
0: अरे वापस नहीं जाना, जाना जाना, वापस नहीं जाना।

0: hospitality partner, Ragasan.
1: List up. Navratri ni dhammakedar raton mate thai jao ready. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Fields Cone, List up. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio partner, Laika Radio.
2: लगन लग तुमसे मन के लगन लगन लग तुमसे मन के लगन लगन लग तुमसे मन
3: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
0: Cool music for a super hot summer time on the लाइका रेडियो नेटवर्क.

0: This is Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, the Midlands, and Greater Manchester.
1: वो था गाना फिल्म भीगी रात का, 1965 की फिल्म जो रफी साहब ने इतनी बाखूबी से गाया, रोशन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी। अब भीगी भीगी रातों में किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

फिल्म है अजनबी और अजनबी वाला गाना सुनिए। वो थी फिल्म अजनबी, ये लता मंगेशकर गा रही है अजनबी।

0: ढूंढने की तैयारी में था और तब मैंने महसूस किया कि ये गाने सब खत्म हो चुके हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में जिन्होंने ये गाने कंपोज किए। कहानी यहाँ ऐसे कुछ शुरू होती है। एक जनाब तुलसीदास उनकी बीवी के साथ मथनिया जगह जो है जोधपुर में वो रहते थे और इनके पांच बच्चों में से सबसे बड़ा बच्चा दलपत। अभी हुआ क्या कि पांच बच्चों को लेकर जिंदगी गुजर रही थी और तुलसीदास के जो भैया इनके भाई थे तबला माइस्ट्रो पंडित बंसीलाल भारती बॉम्बे में थे। उन दिनों बॉम्बे नाम था, अभी मुंबई है। तो माइस्ट्रो पंडित बंसीलाल भारती ने उनके भाई तुलसीदास को कहा कि आप सब बच्चों सहित आप मुंबई आ जाओ, मतलब बॉम्बे आ जाओ। तो पूरे पांच बच्चों को लेकर, जिसमें से सबसे बड़ा बच्चा दलपत जो संगीत में काफी आगे रहा पूरी फैमिली में से, जिसने नाम अपना चेंज कर दिया टू राजकमल बॉम्बे आ गए। शादी के बाद उनके भी छह बच्चे हुए। इनकी वाइफ का नाम सागर। राजकमल और सागर के छह बच्चे चंद्र, सूर्य, विनय, हृदय, शुभ और एक बेटी सुनीता। एंड उनके जो तीन बड़े बच्चे हैं चंद्र, सूर्य और विनय, दे आर कंपोजर्स एंड म्यूजिशियंस इन देयर ओन राइट्स। यू नो, राजकमल जी ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में संगीत दिया। सबसे बड़ा नाम इन्होंने कमाया जब इन्होंने बी आर चोपड़ा के लिए महाभारत में संगीत दिया। महाभारत वॉज 1988 से 1990 तक महाभारत डीडी नेशनल पर पूरा हिंदुस्तान रुक जाता था, कोई काम नहीं करता था। इट वॉज अ स्टैंड स्टिल व्हेन महाभारत वॉज प्लेड ऑन टेलीविजन ऑन डीडी नेशनल। इन्होंने टेलीविजन में संगीत दिया था बहादुर शाह जफर, फिर महाभारत कथा, विष्णु पुराण, आप बीती, माँ शक्ति, ऐसे ऐसे, और भजन्स भी इन्होंने काफ़ी संगीत दिया। जय बाबा रामदेव, वारी जाऊं बालाजी एंड मैया तार दे वॉल्यूम 5 बाय नरेंद्र चंचल, उसका भी संगीत इन्होंने दिया था। एंड वेद सेठी ने भी कंपोज किया था। लेकिन जो फिल्मों में इन्होंने अच्छा किरदार निभाया, मतलब के संगीत के क्षेत्र में, चश्मे बद्दूर उसका गाना आपने सुना, कहाँ से आए बदरा, जो हेमंती शुक्ला और यशुदास जी को उन्होंने गवाया। दूसरी फिल्में इनकी थी सावन को आने दो, जिसके गाने आप सुनने वाले हो, अभी सुना आपने तुझे देखकर, जज्बात, पायल की झनकार, फिर कथा, फुलवाड़ी। दूसरी फिल्मों में अगर मुझे अच्छा सा गीत मिला तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। साज 1998 की उनकी आखिरी फिल्म थी। फिल्म का म्यूजिक गंगा मांगे खून, रजिया, ये सब फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया था। वी आर रिमेम्बरिंग राज कमल जी ऑन हिज 21st डेथ एनिवर्सरी। ही वॉज बॉर्न ऑन 15th of January 1928 इन जोधपुर एंड 1st September 2005 at the age of 77 he passed away. So film composer and director who was active from 1971 to 2005. Main hoon Bali Brambhat paying a tribute to Raj Kamal ji. London aate the, hamesha milte the. Inko mera bhai bhi bahut achhi tarah janta hai. Janta tha. He used to come to East London in many of the Indian clubs and he used also to sing. Bade acche singer the aur hasmukh aur mazakiya kism ke insaan the wo. Unke bete bhi bahut pyare hain. राजकमल जी को कौन याद नहीं करता, अ वंडरफुल एसेट ऑफ द बॉलीवुड, हमेशा याद करते रहेंगे हम।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.1. 128.1 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
4: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
4: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
4: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
6: Listen on Little Garba Stars. Taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October, Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Leicester. 1 thi 10 varashna kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957477330. Masti, music and a full-on Garba fun. Radio partner, Laika Radio.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
8: सेलिब्रेट दिवाली एट द आइकॉनिक रॉयल Albert Hall.
9: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
8: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
9: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
8: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
9: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
10: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
11: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
10: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
12: आई हैव बीन से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली।
9: Back and it's bigger.
8: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
9: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
8: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
9: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
1: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
13: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
14: You know how fans shout at football matches?
15: Oh, wake up!
14: That That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
15: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Like a Radio. This is Like a Radio across the Midlands.
16: Hello, hello, hello. Wake up with me, Cardle, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. Like a Gold and Like a Radio Midlands.
17: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel today on 0208 574 8410. Southall Travel is at all protected.
17: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Extra Podcast Update.
0: Podcast update, episode number 31. Our title is The Diwali Story Showcase, hosted by Raj Baddan and Khush. The team of this incredible show take us behind the Diwali story, exploring why the Ramayana still matters today. Nitin Pallan, founder of Sanatan Events, shares why they chose to present the show in English. With over 300 actors auditioning and a production built with heart, this is a story you'll want to experience. After a sold-out show at the Royal Albert Hall, the Diwali story is coming to OVO Arena Wembley on Sunday, 27th September. Don't miss podcast episode number 31, The Diwali Story Showcase, hosted by Raj Baddan and Khush. Leica Extra Podcast, available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
17: Leica Extra is here. This is Leica Radio. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to LeicaRadio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@LeicaRadio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@LeicaMedia.co.uk.
18: You're listening to Bali Brahmbert in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
19: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 p.m. on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft. Get ready, UK. Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
20: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the OVO Arena Wembley in London.
19: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
20: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
19: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
21: Banana function lakha hua.
22: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
23: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
24: Dubai is the place. 11,
23: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
25: Danube 11, 11. Danu Properties. Danube 11.
2: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Island, Sentosa Island, Batu Caves, Genting Highlands, Bangkok ke floating markets aur beautiful temples, phir Pattaya aur Coral Island ka maza. Fantastical Far East from sirf £2,799 per person. Flights, 4-star hotels, Indian khana aur amazing excursions, sab included. Visit maharajatours.co.uk or call 07956154846.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.

0: वाह क्या गाना है ना। और फिल्म थी अभिलाषा। अभिलाषा में दो हीरोइन जैसे कि मीना कुमारी और नंदा, एंड हीरो थे संजय खान। व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी 1968 आई थिंक, एंड म्यूजिक बाय आरडी बर्मन। इसमें जो सैक्सोफोन का जो पीस बजा है वो हमारे पॉपुलर मनोरिदा, मनोरिदा द ग्रेटेस्ट हु हैज प्लेड सो मैनी सॉन्ग्स। लेकिन देखा जाए तो जब मैंने इंक्वायरी की के सबसे बेस्ट सैक्सोफोन प्लेयर इंडिया में कौन, तो द लेजेंडरी कादरी गोपालनाथ। कादरी गोपालनाथ वाइडली सेलिब्रेटेड एज द अल्टीमेट पायनियर एंड फाइनेस्ट क्लासिकल सैक्सोफोन प्लेयर इन इंडिया। सो यू कैन से द अल्टीमेट पायनियर एंड फाइनेस्ट क्लासिकल सैक्सोफोन प्लेयर, लेकिन द मोस्ट वेल नोन सैक्सोफोन प्लेयर ऑफ इंडिया happens to be none other than हमारे प्यारे मनोहरी दा। And if you look at the English world, the Western world, वहाँ पे तो the legendary Kenny G, the smooth jazz artist, sold over 75 million records globally, and so popular, and figures like John Coltrane and Charlie Parker widely considered the most famous and influential in jazz history. Lekin world famous Kenny G, unki jo style thi play karne ki, he would do a circular breathing motion, matlab pata nahi chalta kahan pe saans le rahe hain saxophone bajate bajate, and he had this beautiful technique by which he played and would play long notes. World famous Kenny G. अरे मैं कहाँ कैरिड अवे हो गया। मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड, आफ्टरनून्स अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव ऑन DAB एलेक्सा गूगल होम एंड लाइक अ गोल्ड .com। और DAB की बात चलती है तो बर्मिंगम वालो, यू कैन गेट लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो ऑन योर DAB फ्रॉम टुडे। And it's the 420th day of Leica Radio Midlands, which started on 1st of July 2025. This is week number 36 and 244th day of 2026, 121 days left. And Sandy Shah will be coming at 4 o'clock. That's in about 40 minutes time, 43 minutes time. I know aap intezaar kar rahe hain, main usko bata dunga. And Raj Patanji is back on after a long weekend break, and that is gonna be on Leica Radio Midlands from 4 to 7. Drive time pe enjoy kijiyega. Hamare artist is, yes, Mala Sinha. Aur kal maine unka naam jo bataya to log bolte kya baat kar rahe ho, Alda Sinha. She was born with the name Alda Sinha, and rest of the story is history. Anyway, आगे बढ़ते हैं और गाने सुनते जाइए, लुत्फ उठाते जाइए। Thank you for lovely, lovely, what do you say, month of September, and thank you for your lovely, lovely messages as well.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in sterling, British sterling pound, is going to get you up to, let's see the latest currency now. The rate is 128.1, 128.1 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.

0: Live is sponsored by Pepe's. Download the Pepe's app, the chance to win prizes with every order. You can now receive 25% off after every six orders. T's and C's apply. Leave a review to be in with a chance to win a £100 Pepe's voucher.
1: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 p.m. on Colours TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Linecroft.
2: Cutthroat Ke Khiladi.
3: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 फॉर 2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9.99 पीस शुरू और हर्जमैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99।
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
5: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
6: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
5: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
6: Also explore 2026 cruises
5: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybound Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
7: The wait is finally over.
8: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
7: Mirzapur is coming to the big screen.
9: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
7: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
10: Abhe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
7: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Just 3 days to go. Mirzapur the movie, releasing in cinemas September 4th.
11: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खोलेगा।
12: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे grand.
13: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
14: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
13: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
14: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
13: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
14: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: The Big Bank is loading and ready tomorrow. Stay tuned.

तेरे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: back and it's bigger.
1: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
0: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
1: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
0: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
2: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
3: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
2: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
4: द बिग बैंग इज लोडिंग एंड रेडी टुमारो, स्टे ट्यून्ड।
5: Network, proud hospitality partner, Ragasan. Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: Breaker Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
1: Big Boss 20, starting from Sunday, the 6th of September, only on Colours TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE 396.
2: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
3: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410. साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. UK.
6: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
2: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
6: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
2: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
0: The sounds of love across the Midlands. The Love Sound. This is LIKA Radio.

0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: I happen to happy valley.
2: It's back and it's bigger.
3: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
2: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
3: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
2: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
4: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11,
2: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
6: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
8: जो कर्ण अर्जुन में हुआ था वो बिग बॉस में दोबारा होगा तथास्तु
9: बिग बॉस 20 स्टार्टिंग फ्रॉम संडे द 6th ऑफ सितंबर ओनली ऑन कलर्स टीवी स्काई चैनल 706 वर्जन मीडिया 826 EE396
0: लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रागासान.
10: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
0: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at LeicaRadio.com. Listen back wherever you are by logging on to LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. The sounds of love across the Midlands. This is Leica Radio.